0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: Peace to the sun,

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: सौ क्यूआर भाई
2: मेसेज आगे
3: घरी एसएमएस आए न

0: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीनामा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी रॉ फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकी को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागी मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागी 9801004477 शर्तहरू लागू हुने छन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो
1: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM